0: ना है तुटे ना मलके ना है जले ना जाए तन सुमान स नानका जो गल चले पाए चौकड़ बोलन आया पह चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया ओ मुआ चढ़ पया
1: लख चोरिया लख जारिया लख कुड़िया लगा लख ठगिया पैना मिया रात नजिना तग कपाहो कत्ती है बामन वट्टी आए कोहे बकरा रिण खाया सबको आखे पाए हुए पुराना सुट्टी है पी फिर पाई है हो नानक तग न टुटई जे तग हो वै

0: नानक फिके बोलिया त मन फिका होए, फिको फिका सदिया फिके फिकी सोए, फिका दरगे सटिया मोथू का फिके पाए, फिका मूर्ख आखी है पाना ले सजाए मला पहला।
1: अंदरो झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैला सर तीरथ जे नावे अतरे नाही मैल, जिन पर अंदर बाहर गुदरते भले संसार, तिन्ने हो लगा रब सिद्धि देखने विचार। रंग हसै रंग रोवे चुप पी कर जाहे, परवाह नाही किसे केरी बात सचे ना, दरबार पर खर्च मंगा जबे।

जानते हो वर्ते वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस समावे दूजी होवे पास साहिब सेती हुक्म ना चले कहीं बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ होवे नानक।

कौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले कसमें पाए और मत सुनो कलियो वजह पे जुड़ा पाए कसमें करे बराबरी फिर गैर संदर पाए।

अपनी हरता के पारावार आप राय साथ किधर आप राय मार एक ना गली जन जीने एक तरी चढ़ा किस यार आप राय करे आप मौके से करी पुकार ना रे करना जन किया फिर तेज ही कर ली सार।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आसां दी।

लहे न जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत केह अचल मूरत अनभाव प्रकाश अमित तोज कह जाय कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणिजाय त्रिपवन महीप सोर नार असुर नेत नेत वान तृण कहत त्व सर्व नाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत सुमत रहे संत हौ टोल साध बहुत रे डिठे सन्यासी तपसिया मुख हो ए पंडित मिठे बरस एक हौ फिर किने नह पर चौ लाया कहते है कहती सुनी रहत को

जन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। जे सौ चंदा उगवा सूरज चढ़ा हजार, इत चानन है

आई दयाल पुरख मेहरवाना हर नानक साचो अखाना मन चाओ पया प्रभ आगम सुनया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदर बनया आवहु सिख सतगुरु के प्यारे गावहु सच्ची बाणी बाणी ता गावहु गुरु केरी बाणिया सिरबाणी बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरु बाणी कह सेवक जन माना प्रतख

तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास रखहु सरनाई।

पाछ भेद नहीं गोरे अर्जुन पर तख हार अंदर सच्चा ने लाया प्रीतम अपना तन मन हुए निहाल जा गुर दिखा सामने सो कहो टल गुर सेविया अहलस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाए हो सिफत खसम दी नूर अरसह कुरसह चटिया तो दड़ठे सच्चे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहा दैसाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाह।

गए मसकत कहाल नानक देव के जले केती छुट्टी ना जिनी नाम ते आया गए मसकत कहाल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

गए मशक्कत काल नानक ते मुख केती छुटी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे खिन रम गुरगम हरदम ने जम।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट समय तुम कावहो आप हाथ दे मोहे बचावहो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख समय करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिया सब बैरिन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया चुन चुन सतर हमारे मारिया आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जू करिए हो रक्षा राख लिहो मोहे राख नहारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्म अवतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जमन काल सब जगत बनाया देव दैत जच्छन उपजाया आदंती कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी शिवकन को शिवगुण सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान घट घट की पट पट की जान जबद करख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब करख करत हो कब हो तुम मैं मृत दे तर सब हो जीते बदन सृष्ट सब तारै आपे अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अरयालम निरंकार निर्विकार निरलंब आद नील नाद सांब ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कश भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह भेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप नूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेत जकीनी उत्पुज खान बहर रच दीनी कहूँ फूल राजा हुए बैठा कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव याद जुगाद स्वरूप सुजंपव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संगरो दुष्ट जिते उठो तो तपाता सकल मलेश करो रणकाता
ਜੇ ਅਸ ਤੁਜਤਾ ਵਿਸਰਨੀ ਪਰੇ ਤਿਨਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਤ ਹੋਇ ਮਰੇ ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ।

दारिद दुष्ट दोख ते रहा, खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी। सर्व ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई, खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी। सर्व ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ती को आँख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब है, बहु भेद कहें हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तो हे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ कै, कहो तुहारो द्वार। बाहि गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। सगल द्वार को छाड़ कै, गहो तुहारो द्वार। बाहि गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां, शब्द गावने आईया, शब्दो तां गावहो हरी केरा, मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होवा, सतगुरु मैं पाया, ये मन मेरिया। तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अंगीकार हो करे तेरा, कारज सब सवारना। सबना गल्लां समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा। घर तां तेरा सब किश है, जिस देह सो पावे। सदा सिवत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाईया। कर शांत सुख मन आए वसिया, जनीशा सब पुजाईया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटह, जिस दिया यह वडियाईया। कह नानक सुनहो संत हो, शब्द धरहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द, तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द।

अदरख दास पाठ की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाख सफारी कर आज, फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत वस्त्र दीन बहु साज, सो दामा अपदा ते राखिया, गन का पढ़त पूरे तेह काज, श्री सतगुर सुप्रसन्न कल युग होए, रखो दास पाठ की लाज। संता की कार्य आप खलोया, हर काम करावण आया राम, धरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम, रत्न रत्न पदार्थ बहु सागर भरिया राम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम, गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया, निर्मोलक रत्न अपारा, हर हर नाम अतोलक पाया, तेरी भगत भरे भंडारा, समुंद विरोल शरीर हम देखिया, एक वस्त अनूप दिखाई, गुर गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद न पाई, समुंद विरोल शरीर हम देखिया, एक वस्त अनूप दिखाई, गुरु गोविंद गोविंद।

सहज सुपाय दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चट्टी तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दाविसाहो सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाहो जिस पास बैठिया

हर नाम समाणी सिद्ध साधिक तरसह सब लोए पूरे भाग प्राप्त होए सब किश साचा साचा है सोए उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए सच साचा सच आप दृढ़ाए नानक आपे वेखै आपे सच लाए सब किश साचा साचा है सोए उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए सच साचा सच आप दृढ़ाए नानक आपे वेखै आपे सच ला

जिस पास बैठिया सोही सबना दा सजन सच्चा पात साहु सिर सांदा जिस पास

काचा तन संच मूर्ख गावार। मनमुख भूले अंध गवार। दिखिया कै तन सदा दुख होए। ना साथ जाय ना प्राप्त होए। साचा तन गुरमति पाए। काचा तन फुन आवै जाए। रहौ मनमुख भूले सब मरहै गवार। भव जल डूबे ना उर वार ना पार। सतगुर भेटे पूरा भाग। साच रते अहनस बैराग। चाहो जग में अमृत साची बाणी। पूरा भाग हर नाम समाणी। सिद्ध साधक तरसै सब लोए। पूरा भाग प्राप्त होए। सब

माता तरत महत दिवस रात दाई दाया खेले सगल जगत चंगियां या बुरियां

हुई सहाय अर्जन हर गोबिंदन सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठाए सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौ निद आवै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तार के बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे पंजा प्यारिया चौहां साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया

श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता सरसुमहत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगे आईयां बुरियां आईयां वाचे धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर।

0: सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आखे लाख करोड़ सच्चा सब तान सच्चा सब जोर सच्ची तेरी सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्यान सच जो मर जमे सो कचन कच महला पहला
1: वड़ी वड़ाई जा वड़ा नाओ वड़ी वड़ाई जा सच ने आओ वड़ी वड़ाई जा निचल थाओ वड़ी वड़ाई जाने आलाओ वड़ी वड़ाई बुझे सब पाओ।

0: विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरै जंत विस्माद पौण विस्माद पाणी विस्माद अग्नि खेडै विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगै प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सालाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़ विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडां रहिया विस्माद नानक बुझण पूरे पाग महला पहला
1: कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत भाव सुख सा कुदरत पैतालियाँ कासी कुदरत सर्व्याकार कुदरत वेद पुराण कतेबां कुदरत सर्विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सरप्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहार कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अपमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कदर करता बाकी नहीं पाक नानक हुक्म अंदर वेखे वरत ताक पौड़ी।

बैठा हुआ दुनिदार कल संगल का चलाया। आज्ञा करने कृतवाचे बह लिखा कर समझाया। आउन होवे पाउंदे हुण सुनिए क्या रुआया। मन अंधे जन्म गवाया, मन अंधे जन्म गवाया।

सच्चो सच वरताया, जिस तू दे तिस मिले सच था तिन्नी सच कमाया, सतगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया, मूर्ख सच ना जान नी मन मुखी जन्म गवाया, विच दुनिया काहे आया।

0: पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरी है सात पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी है खात पड़ी है जेते बरस बरस पड़ी है जेते मास पड़ी है जेती अरजा पड़ी है जेते सास नानक लिखे एक गल और हों मैं चखना चाक माला पहला
1: लिख लिख पढ़िया ते ता खड़िया बहुत तीर्थ भव्या ते तो लव्या बहु फेकिया देही दुख दिया सहवे जिया अपना किया अन्ना खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा भाया वस्त्र न पहरे नस्केरे मौन में गुता क्यों जागे गुर बिन सुता पग पे ताना अपना किया कमाना हलमल खाई सिर छाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई विड़ना में किस थाए न पाई रही बाणी मड़ी मसाणी अंधे ना जाने फिर पछताणी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन मसाए नानक नदर करे सो पाए आ संदेसे तेने केवल हमें शब्द जलाए पौड़ी भक्त रे मन भावन दे।

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार, कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनण हार।

सब जग चलनहार, पूर मिठा पूर मखन पूर डोबे पूर, नानक बखाने बेनती तुझ बाज कूड़ो कूड़ महला पहला।

साधना मारिए, जेहा काले कालना ते वे नाव उपचारिए, ऐसी कलना खेडिए जित दरगे गया हारिए, पढ़िया तू मियाँ विचार के विचारिए, मोह चले सो अगे मारिए, मोह चले सो अगे।

परस परस परस परस गुर गुरु कहायो। पन मथरा मूरत थरा सिर लाए चित सनमुख रहो। काल युग जहाज अर्जन गुरु सगल सृष्ट लगबे तरो। ते जन जाचो जगत पर जानियत बासर रैन बास जाको हित नाम स्यो। परमे अतीत परमेश्वर के रंग रंगियो वासना ते बाहर पै देखियत ताम स्यो। अपर परंपर पुरख स्यो प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाही ओरे काम स्यो। मथुरा को प्रभ सर्व में अर्जुन गुर।

सोरठे गुरु अर्जुन पुरख प्रमान पार्थो चले नहीं नेजा नाम निशान सतगुरु शब्द सवार्यो पवजल सहर सेत नाम।

0: राम सतगुरु तुठे पायो अब नाहे अवर सर काम बार अंतर पूरी पड़ी।
1: तीन पवन पर पूरे ओ सोई आपन सरस कियो ना जगत कोई आपने आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो पायो नहीं अंत सुरे असुरे नर गंधर खो जंत फिरे अबनासी अचल अजूने संभो पुर खोतन अपार परे करन कारण सम्राट सदा सोई सर्व जी मन ते आयो श्री गुर रामदास जय ओ जय जग में ते हर परम पद पायो सतगुर नानक भगत करी एक मन तन मन तन गोबिंदियो अंगर अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान रस।

0: आयो श्री गुरु रामदास जय ओ जय जग में ते हर परम पद पायो।
1: जब लो नहीं भाग लीलारी उदा तब लो परम ते फिरते बतायो कल कोर्स

0: कल समुंदर पैरूप प्रगट हर नाम उदारण बसे संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण निर्मल पेख पार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जान्यो भयो ते संसर सोई तरन गगन नव खंड में ज्योत स्वरूपे रहो पर पन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन परतख हर पन मथुरा कछ भेद नहीं गुरु अर्जन परतख हर
1: श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा सतजुग जिन त्रूपर श्री प्रहलाद भगत उदरियंग हस्त कमल माथे पर तरियंग अलख रूप दी लख्या ना जाई साधिक सिद्ध सगल शरणाई गुर के बचन सत जी तार हो मानस जन्म दे निस्तार हो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रभ पाईए गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसे बनवारी तिन लेना थाप जोत जगतारी लेने पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले को दिया तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो हर का नाम अखैन दप्यो अप्यो हर नाम अखैन दचो जुग गुर सेवा कर फल लियं बंदे है जो चरण शरण सुख पावे है परमानंद गुरमुख कई।

0: गुर गुरु जप मन रे जा की सेव शिव सिद्ध साधिक सुर सुर गन तरे ते तिस गुर बचन सुन कन रे फुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर करै तरयो प्रहलाद गुर मिलत मुन जन रे तरै नारदाद सनकाद हर गुरमुख है तरै एक नाम रग तजो रस अन रे दास बेंत कहै नाम गुरमुख लहै गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे
1: निर्मल नाम सुधा परपूरन शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर गहर गंभीर था आत बड सुपर सदा सब बिदरत नागर।

श्री वाहे गुरु साहिब जी जैत सरी महला चौथा कर पहला चौपदे एक ओंकार सत गुर प्रसाद मेरा हीरा रतन नाम हर बसिया गुर हाथ धरियो मेरा माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतारे गुर नाम दियो रेन लाथा मेरा हीर रतन नाम हर बसिया गुर हाथ धरियो मेरा माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतारे

0: ज्ञानी बुझता है। सात जुगरा संतो का तम ग्रथ बाहो, त्रेत रथ जत का जोर ग्रथ बाहो, त्रेत रथ जत का जोर ग्रथ बाहो। काल जुगरा थगन का कूड़ गैरथ बाहो, द्वापरा तपे का सात ग्रथ बाहो, काल जुग रथ अग्न का कूड़ ग्रथ बाहो। महला पहला।
1: सांग कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे सच रहे, सबको ससमावे। हरिब कह रहा परपूर, राम नाम देवा मैं सूर, नहीं ले प्राचित जाए, तो नानक मुखंत्र पाए। जिज में जोर छंदी चंद्रावल, कान कृष्ण जादम फया, पार जात गोपी ले आया, बिंद्रावन में रंग किया। कल में वेद दर्पण हुआ, ना खुदाई अलभ भया, नील वस्त्र ने कपड़े पहरे, त्रिक पठानी अमल किया। चारे वेद हुए सच पढ़े गुणे तिन चार विचार, आओ भक्त करनी सदा, आओ नानक मुखंतर पाए।